आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

जाने। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।

रखना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी।
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार अंतरा मस्ती का ये मस्ती भरा शो। तो सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे, और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त अमन। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे हमेशा की तरह सरफराज भाई यानी कि सरफू पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से। बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम असलाम भाई जान, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। एंड नाहिदन साई जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलाम जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और नाजिम जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं राजेश कुमार जी। आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आरिफ सिंधी जी गांधीनगर गुजरात से हैं। नीलेश विरोकार जी जुड़ चुके हैं, आपको भी वेलकम करते हैं और नमस्कार कह रहे हैं सभी दोस्तों को। अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार वाले, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे एमडी फैज आलम जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ मैं और बता दूं कि आरजे सोनी जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और यानी कि प्रियंका जी जुड़ चुकी है, वेलकम करते हैं। जितेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं। एमडी फैज आलम जी, अच्छा ये तो हैं। और सभी जितने भी दोस्त सुन रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके सभी का वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने के साथ, और इस गाने से स्टार्ट होता है आज का अंतरा मस्ती। एंजॉय द ट्रैक।

0: हाँ।
1: और यहाँ शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिख के भेजेंगे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे, जो है 9135841232, यानी 9135841232।

और बहुत सारे मैसेज तो आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला मैसेज मेरे पास आया हुआ है नाहिद अंसारी जी का, आरजे सोनी जी का, प्रियंका जी का, एमडी फैज आलम जी का, और पता नहीं और लोग कहाँ गायब थे अभी। कोई बात नहीं, नाहिद जी को मैं कॉल लगाता हूँ सबसे पहले।

0: बोला?
1: नहीं जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, क्योंकि आपका सबसे पहला नंबर, मतलब सबसे पहला मैसेज आया हुआ है अंतरा मस्ती में। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: अस्सलाम
1: वालेकुम। सलाम, और कैसी हैं आप?
0: बस ठीक हूँ, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम एकदम बहुत ही झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक गारंटी के साथ हैं। बिल्कुल,
0: बहुत लंबा छुट्टी में चले गए थे।
1: हाँ, छुट्टी अब क्या करे, मैं छुट्टी लेता नहीं, छुट्टी हो जाती है। क्योंकि मैंने कोई जानबूझकर छुट्टी लिया नहीं था, और मैं कोई वहाँ पे मौज मस्ती नहीं कर रहा था। वहाँ पे समझिए कि वहाँ तो ये मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग होता है जो वहाँ पे जाकर आदमी फंस जाता है, आ नहीं सकता है चाह कर भी।
0: हाँ वो तो है,
1: ऐसा ही होता है,
0: काम पहले है ना।
1: हाँ, इसलिए पहले काम काम है, इसलिए तो काम करना पड़ा है कि नहीं। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
0: तुम करो वादा, ये सॉन्ग
1: है। ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे। व्हाट्सएप करना है सिर्फ, रेडियो हॉटस्टार के ऐप से नहीं भेजना है। जुड़ चुके हैं विलास निकम सर जी, अशोक देशमुख जी,

ओ माय गॉड, हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, तो यहाँ से अंतरा शुरू हो चुका है। अंतरा मैच शब्दों से गाने लिख के भेजिए 9135841232 पे, सिर्फ व्हाट्सएप करना है।

और इस बार नेटवर्क तो डिस्टर्ब कर रहा है, मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार रेडियो गाना पर आप लोग सर्च करके वहां पे सुनिए, रेडियो गाना पर शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है, वो है यानी प्रियंका जी का और आरजे सोनी जी का और एमडी फैज जी का, सर्वजीत सेठी जी का, अनिल कुमार जी का, इमरान भाई भी जुड़े हैं, वेलकम है, अभिषेक तिवारी जी का और नोरत सुवासिया जी का भी है, संध्या पटेल जी का है। तो सीधे कॉल लगाते हैं ये प्रियंका जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में प्रियंका जी, और कैसी हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
1: हाँ, आवाज आ रही है ना आपकी।
0: ओके, और बताइए आप कैसी हैं?
1: अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
0: अच्छी बात है।

0: आपने कहा
1: वाला गाना प्ले कर दीजिए।
0: आपने कहा है वादा वादा कर ले,
1: वादा उसमें वादा आ रहा है।
0: अच्छा तो अब बताइए, अब यहाँ पे गाना चेंज कर रही हैं
1: आप, ये गाना सुना दो बस।
0: वादा करो,
1: वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ।
0: अब यहाँ पे गाना चेंज कर रही हैं, दिक्कत हो गया ना मुझे, अब मैं उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा ना। वेट वेट वेट,
1: ओ आप देख लीजिए।
0: चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए गाना प्ले करूंगा, जो आपने कह दिया वही मैं प्ले करूंगा, और प्ले कर भी दिया है शायद, कहाँ गया जी। हाँ ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

बिल्कुल, मेरे पास इस बार सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, और इनके बाद जाकिर खान जी हैं, आरजे सोनी जी हैं, और प्रियंका जी हैं, और सीता गोप जी हैं, एमपी फैज जी हैं, नीलेश जी हैं, इमरान जी हैं, अनिल जी हैं, और संध्या पटेल जी, आरिफ सिंधी जी हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम इन्हीं को। कहाँ गए सर्वजीत सेठी जी, आइए जी।

0: सर्वजीत सेठी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया अमन सर जी, आप कैसे हो?
0: अरे मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हो?
1: बढ़िया सर, बहुत मिस किया सर आपको।
0: अरे भाई मैंने भी बहुत मिस किया आप सबको, बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया यार, मैं क्या करूं, है ना। वैसे मैं बता दूं आप,
1: प्रोग्राम सर आपका
0: जी अच्छा रहा बिल्कुल, और लेकिन आप हंसते बहुत अच्छा है भाई, क्या बात है आपकी हंसी का राज?
1: जी सर
0: बोला, आप हंसते बहुत अच्छा है, आपकी हंसी का राज क्या है जरा बताइए।
1: सर कुछ राज नहीं है सर, कोई राज
0: नहीं, मुझे तो लग रहा है कुछ तो बात है, इसलिए आपके भाई हंसते हैं।
1: खुशी हो रही है सर आपसे बातचीत करके, खुशी हो रही है सर
0: वो दिल, मतलब यानी कि मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मेरी मुझे हंसी नहीं आ रही है। आपको आप हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है, ये चीज है। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: मेरे दिल में जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा
0: मिल गया जी, मुझे भी मिल गया, है ना। एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
1: ओके सर, वेलकम।

वेलकम बैक। और इस बार सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है आरजे सोनी जी का, क्या बात है, और नाहिद जी का, जाकिर जी का, एमडी फैज जी का, अशोक पाल जी का, इमरान जी का, सर्वजीत जी का, संजय पटेल जी का, अनिल कुमार जी का, नीलेश जी का, प्रियंका जी का, अरुण मंडल जी का, मतलब बहुत है दोस्तों का। तो सीधे कॉल लगाते हैं आरजे सोनी जी को।

0: इनका कॉल नहीं लग पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, नो कॉलिंग लिख के आ रहा है। आ गया, हाँ हेलो, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो
1: जी,
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में, और कैसी हैं आरजे सोनी जी?
1: बिल्कुल बढ़िया, नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: नमस्ते, हम तो बहुत अच्छे हैं जी, बहुत दिन बाद आए हैं, क्या करें, कुछ इन मजबूरियां थी जो आ नहीं सकता था चाह कर भी।
1: बिल्कुल, चलिए कोई नहीं, वो तो सबके लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आना चाहता था, मैं तो चाहता था कि उड़ के आ जाऊं, लेकिन आज मैं पंख लगा के आ ही गया और भी सावन के मौसम के साथ।
1: चलिए ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप आए।
0: और बहुत दिनों बाद आपसे बातें हो रही हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और पार्टिसिपेट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, और आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: जीवन जितनी बार मिले।
0: ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, यही ना?
1: जी हाँ बिल्कुल यही।
0: क्या बात है, गाना बहुत प्यारा है, एंजॉय कीजिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद,
0: वेलकम जी।

बिल्कुल, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तेरा ये प्यार मिले। और अब जल्दी से अपना गाने अंतरागत से शब्द से गाने लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे। और मैं कंप्लेन कर रहा

0: और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुँचा है हमारे नीलेश वीरोकार जी का, जाकिर खान जी का और इमरान भाई जी का और प्रियंका जी का, साथ ही साथ यहाँ पे सुनीता गोप जी का है और सर्वेश भगत जी वेलकम है आपका भी, और सर्वजीत शेट्टी जी है, हमारी नंदनी माँ जी है वेलकम है माँ जी आपको मेरा प्रणाम है, अनिल कुमार जी है, एमडी फैज जी है, संजय पटेल जी, अशोक पाल जी है, दिगंबर सिंह जी है, अरुण मंडल जी है, रंजीत जी है, मतलब सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सीधे कॉल लगाते हैं नीलेश वीरोकार जी को। नीलेश वीरोकार जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं?
1: धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हूँ सर जी, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छा हूँ, अच्छा हूँ।
1: आपके तरफ पानी बारिश चालू है?
0: बारिश तो एक्चुअली मैं कल ट्रेनिंग में था तो वहाँ पे करीब 12:30 से लेकर करीब यानी कि 2 बजे तक जबरदस्त बारिश हुई थी, जोरदार बारिश हुई थी।
1: हो गया, हमारे तरफ तो बहुत ही नुकसान हो गया,
0: लेकिन आज बारिश नहीं हो पा रही है, आज तो मौसम
1: गांव के घरों घरों में पानी है।
0: अच्छा, वहाँ ऐसा है?
1: हाँ, 2 दिन बहुत बहुत बारिश हो गई।
0: तो अभी सब कुछ ठीक है, मतलब अभी बारिश हो रही है या बारिश खत्म है? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आपके तरफ नेटवर्क इश्यू है, लगता है नंबर पे कॉल लगाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हमको नंबर पर ही कॉल लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है कि नहीं। हेलो।

0: आपके तरफ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है ना?
1: हाँ सर, कट गया था मुझे।
0: कोई बात नहीं, बताइए अभी आप अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं?
1: गाना है वादा कर ले साजना।
0: वादा कर ले साजना, अच्छा जी, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।
1: हाँ
0: हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगड़ जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं सर आपको।

0: वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है किन का, जाकिर खान जी का। ओके, जाकिर खान जी हैं और उनके बाद है सर्वजीत सेठी जी हैं, आरजे सोनी जी हैं और रमेश जी जुड़ चुके हैं। वेलकम है, प्रियंका जी हैं, नाहिद अंसारी जी हैं और हमारे ये संजय साहनी जी हैं और राजेश कुमार जी हैं और प्यारे पर्वत बगाई जी हैं, संजय पटेल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, एम डी फैज जी हैं, अजय भगत जी, अनिल कुमार जी हैं, रंजीत जी हैं, अशोक पाल जी हैं, श्रीता गोप जी हैं, दिगंबर जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त। सीधे कॉल लगाते हैं हम अपने जाकिर खान जी को। जाकिर खान, जाकिर खान जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
0: हम तो एकदम झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक ग्रांटी के साथ।
1: जी
0: जी, तो बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला, फिर अंतरा मस्ती से बंद किया था, अंतरा मस्ती में फिर वापस आ गया हूँ, यही से फिर स्टार्ट हो रहा है।
1: जी, बहुत दिन का, 7 दिन हुए,
0: 8 दिन हुए आज लेकर।
1: हाँ जी, 8 दिन।
0: ओके, तो बताइए आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं आप?
1: मैं तेरे प्यार में पागल।
0: मैं तेरे प्यार में पागल, जी बिल्कुल, मैं तो तेरे प्यार में पागल हुई। एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी।

0: माय गॉड, नेटवर्क मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अभी तो कंप्लेंट किया है, अब पता नहीं इसका कंप्लेंट का समस्या का समाधान यानी कि कब तक किया जाएगा वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो मैं बताना चाहूंगा। ये सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है MD फैज आलम जी का, और हमारे प्यारे प्यारे प्यारे ओ माय गॉड, फिर नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है यार। और मेरे प्यारे प्यारे प्यारे MD फैज आलम जी का, और मेरे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद भगाड़े जी का है, और यानी कि प्रियंका जी का है, नीलेश जी का है, दिगंबर जी का है, सरवजीत शेट्टी जी का है, संजय साने जी का है, राजेश कुमार जी का, सुनीता गौर जी का, संध्या पटेल जी का, सरवेश भगत जी का, और हमारे अनिल कुमार जी का, अजय भगत जी का, अशोक पाल जी का, और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं फैज जी को। MD फैज जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मंजिल में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है।
0: ओके, तो बताइए और कैसे और क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो काम करते ही चल रहा है,
0: सुन रहे हैं जी, अच्छी बात है। और एक चीज और बता दूं कि आज से स्टार्ट हो रहा है रात के 10 बजे से RJ आकांक्षा जी का शो, लेकिन मैं बता दूं कि नेटवर्क इशू चल रहा है रेडियो हॉटस्टार पे, हो सकता है कि डिस्कनेक्शन उनका भी हो, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं?
1: रात में ठीक हो जाएगा 10 बजे के बाद,
0: देखते हैं कि क्या होता है।
1: शाम के टाइम इस टाइम सब जगह वही हाल है, हम लोग का भी वही हाल है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैसेज इतना जल्दी भेजते हैं रास्ते में अटक जाता है।
0: बिल्कुल वही, ऐसा ही होता है, और लोग कहते हैं हमने तो सबसे पहले भेज दिया है, और मेरे पास सबसे पहले आया तब ना मैं मानूंगा, है कि नहीं?
1: जी जी, सही बात,
0: हमारे पास सबसे पहले आ गया तभी मैं मानूंगा कि हाँ मेरे पास सबसे पहले आ गया, जिनका सबसे पहले आ गया वो आ गया जी।
1: हाँ, वो नेटवर्क रास्ता में ही अटक जाता है, धीरे धीरे जाता है, निकलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुन कर लाए हैं आप?
1: तुम मिले जब से
0: महसूस हुआ तब से
1: जी।
0: हाय हाय, क्या बात, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वालेकुम अस्सलाम।

मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा इस बार यानी कि प्रियंका जी का। प्रियंका जी के बाद है हमारे नाहिद जी हैं और उनके बाद से आरजे सोनी जी हैं और सुनील कुमार जी जाकिर जी हैं और उनके बाद यहाँ पे संजय क्या नाम है सरजीत सेठी जी और सर्वेश भगत जी रूपचंद जी और संजय पटेल जी अशोक पाल जी दिगंबर जी अनिल कुमार जी एमडी फैज जी अकबर खान जी जुड़ चुके हैं। वालेकुम असलम। और आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले किनका पहुंचा है? हमारे सरफराज पटेल जी का। ओ माय गॉड। और सरफराज पटेल जी के बाद हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी हैं। क्या बात है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, जरूर आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे है हमारे आरजे सोनी जी, उसके बाद नाहिद जी हैं, और सुनील कुमार जी, स्मिता गोपी और प्रियंका जी, जाकिर खान जी हैं, और सरबजीत सेठी जी, अकबर खान जी हैं, दिगंबर जी, अशोक पाल जी हैं, संजय सानी जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, नीलेश बिरोकार जी हैं, फैज जी हैं, राजा भाई जी हैं, और संजय पटेल जी, रूपचंद जी, देवपाल मुनिया जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम सरफराज जी को।

0: वालेकुम अस्सलाम, और कैसे हैं?
1: जी शुक्र है, दुआ है कि आप सुनाओ, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
1: अच्छी बात है, कैसा रहा आपका सब्जियों जो कहे क्या?
0: अरे वो कैसा रहेगा आप ही बताइए।
1: अच्छी बात है, और सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल सब ठीक है, आपकी दुआएं हैं।
1: अच्छी बात है। और अच्छा लगा आज आप आए तो।
0: जी
1: आज अच्छा लगा, मतलब आप आए तो, मिस कर रहे थे।

बिल्कुल। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज इस बार पहुंचा है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी का। वेलकम करते हैं नाहिद अंसारी जी हैं और प्रियंका जी हैं, संजय सानी जी, अशोक पाल जी, अकबर खान जी, सुनीता गोप जी, जाकिर खान जी, सुनील कुमार जी, सर्वेज भगत जी, सत्य पटेल जी, दिगम्बर जी, सर्वजीत शेट्टी जी, पूजा भास्कर जी, काजल झक्का जी, देवपाल मोरे जी, मतलब क्या कहें, सभी दोस्त सभी का वेलकम करते हुए सबसे पहले कॉल लगाते हैं प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी को।

0: हमारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार नमस्कार सर जी, आपको और हमारे सभी प्यारे मित्रों
0: बहुत बहुत वेलकम है। बहुत दिन बाद कैसे आना हुआ आज?
1: जी सर, आपके बहुत दिन बाद है, आप भी तो बहुत दिन आ गए।
0: अरे हम तो एक हफ्ता बाद आए हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ तुम मजबूरियां थी, मैं चाह कर भी नहीं आ सकता था, है कि नहीं?
1: अच्छा
0: ओके, तो आप आए बाहर ही कहे, खैर कोई बात नहीं। और बहुत देर से आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका नंबर आ गया।
1: जी सर जी, वो तो एक बार तो आना ही था।
0: हाँ जी, दिन आप अगर यानी कि लगते हैं उस दिन जरूर हासिल कर लेते हैं, मतलब एकदम लगे रहते हैं बिल्कुल।
1: बार बार दूसरे में आया था, दो या तीन नंबर पे तो बार बार रहता हूँ,
0: दो या तीन नंबर पे जा रहे थे।
1: जी।
0: तो अभी बता दीजिए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
0: अच्छा, एक बात बताओ,
1: आ गए पास,
0: मतलब इस गाने के लिए करीब 12-15 लोगों ने इस गाने को मतलब भेजा है, और तो लोग अलग अलग भेजे हैं, लेकिन 12-15 लोगों ने इस गाने को भेजा है, मतलब एक,
1: चलो इसी के साथ सबकी पसंद पूरी हो जाएंगी मेरे साथ साथ।
0: जी बिल्कुल, लेकिन उन सब में सबसे पहला आपका नंबर था, मतलब यानी कि आपका मैसेज सबसे पहला।
1: सभी को डेडिकेटेड मेरे लिए।
0: जी
1: ओके, सभी को डेडिकेटेड करता हूँ मैं, गीत वो भी सुने।
0: ओके ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

और बता दूं कि रेडियो हॉटस्टार के आपकी कैसे से मैसेज करने वाले हैं हमारे सर्वजीत सेठी जी, रमेश जी और काजल झक्का जी, मुबारक हुसैन जी, संतोष गौंड जी, दिगंबर जी और शिल्पा बेन जी और निकलस जी, अमीना खान जी और रणवीर सिंह जी, सभी का वेलकम करते हैं।

बिल्कुल, मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है किन का देखता हूँ, सुनीता गोप जी का। अच्छा, सुनीता गोप जी है, और इनके बाद नाहिद जी है, संजय सानी जी है, और सुनील कुमार जी, प्रियंका जी है, जाकिर खान जी है, नीलेशकार जी, अकबर खान जी, अशोक पाल जी है, सरबजीत शेट्टी जी, एमडी फैज जी, सर्वेश भागा जी, अनिल कुमार जी है, जितेंद्र जी है, पूजा भास्कर जी है, संध्या पटेल जी है, देवपाल मुरे जी है, दिगंबर जी है, मतलब बहुत से दोस्त हैं, सीधे कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है। कैसी हैं सुनीता गोप जी? वेलकम है आपका रेडियो हॉटस्टार के अंतरा मस्ती में। और अब आपके कॉल के बाद से स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है। माय गॉड, शायद आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना?
1: जी सर, नहीं।
0: अच्छा कोई बात नहीं, बताइए अंतरा के सबसे गाना कौन सा चुन कर लाई है?
1: मेरा
0: ओके, एंजॉय कीजिए, सुनवाता हूँ ये गाना।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए स्टार लेटर्स चॉइस और कीजिए दिए गए अक्षर से गाने की मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9135 84 12 32।
2: बिल्कुल, तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड राउंड, लेकिन उससे पहले मेरे पसंद के गाने और एंजॉय कीजिए, और इसी गाने से स्टार्ट होता है सेकंड राउंड, एंजॉय द ट्रैक। मुझे बहुत पसंद है ये गाना।

0: और ये शुरू हो रहा है आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो।

बिल्कुल। लेकिन मेरे पास सबसे पहले मैसेज जो पहुंचा हुआ है, जो सही जवाब है अकबर खान जी का है, और इन प्रियंका जी का है, और नाही जी का है, और हमारे दिगंबर जी का भी है, और साथ साथ देवपाल मोरे जी का भी है, और यहाँ पे यहाँ एम डी फैज जी का भी जवाब सही है, और किन का बता दूं, हमारे नीलेश वीरोकार जी का है, ओके, और अनिल कुमार जी का शायद नहीं, इनका नहीं है, जाकिर खान जी का है, और सरबजीत सेठी जी का, इशाक हुसैन जी का, सुनील कुमार जी का, पूजा भास्कर जी का, ये सभी का जवाब सही है। सीधे कॉल लगाते हैं अकबर खान जी का, जिनका गलत था उनका नाम नहीं लिया।

0: अस्सलाम वालेकुम अकबर खान जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में, कैसे हैं?
1: वालेकुम अस्सलाम अमन जी,
0: और कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हूँ जी।
0: ओके जी, तो अंतरा मस्ती सुन रहे हैं जी?
1: अंतरा मस्ती सुन रहा हूँ, क्या बात है, अभी इतने दिन कहाँ चले गए थे?
0: एक हफ्ते के लिए मेरा यानी कि ट्रेनिंग था स्कूल वाला, वहीं गया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी,
1: हाँ जब भी मैं गया प्रोग्राम बिल्कुल सुना सुना लग रहा था
0: जी। ओके जी, तो बताइए अंतरा के शब्द, सॉरी सॉरी सॉरी, अंतरा के शब्द नहीं, ये जो आपने सुना मतलब अंतरे के बोल, वो कौन सा गाना था?
1: हाँ, उसका गाना तेरे जैसा यार कहाँ।
0: बिल्कुल, तेरे जैसा यार कहाँ। और आप सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए।
1: ये फिल्म शायद दिल लगी का है जी।
0: अच्छा,
1: अभिजीत गुनगुनाता हूँ थोड़ा सा।
0: ओके ओके ओके ओके।
1: जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले
0: ओले ओले
1: ओले, गाऊं तरन नयारा झुम झुम के होले होले होले होले होले होले होले होले। ये सुना दीजिए जी।
0: बिल्कुल सुना दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी भी आपको लड़की देखकर दिल ओले ओले बोलता है? ये मेरा तो बोलता है, इसीलिए कह रहा हूँ।
1: हाँ जी, आपका बोलता है, बुढ़ा थोड़ी होता है जी।
0: जी ओके, ओके, एंजॉय कीजिए, बता दिए।
1: बिल्कुल जी,
0: वेलकम जी।

0: बिल्कुल, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: होठों पे नगमे हैं, बाहों में बाहें हैं, खुश रहे यार अपने लब पे दुआएं हैं, चेहरे हैं चार, अरे दिल एक यारों का, चारों दिशाओं में चर्चा है चारों का, दिलकशी दिलकशी दिलकशी है दोस्ती।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मैं बता दूं कि आज के जितने भी गाने हैं वो दोस्ती पर होने वाले हैं। और अभी जो एक आप लोग गाने जो भेजे हुए हैं सभी का गलत गलत आंसर आ रहा है, वह बागों में बाहर वाला गाना तो बिल्कुल नहीं है, ये दोस्ती पर गाना है। रामपुर का लक्ष्मण क्या करते हैं, रामपुर का शोले देखा है, उसने का गाना होगा। मैंने हिंट दिया है, गाना आपको भेजना है।

0: और संध्या, संध्या पटेल जी बहुत बहुत वेलकम है आपका। सबसे पहले तो आप मुझे जवाब बताइएगा,
1: दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती।
0: बिल्कुल सही जवाब है, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती।
1: मेरे को उम्मीद नहीं था भैया कि मेरा नंबर लग जाए।
0: अरे एकदम आप ही का, एक मैं बता दूं कि सिर्फ आप ही का नंबर लगा है, बाकी किसी का नहीं लगा है, बाकी सबका जवाब गलत है। जितने भी जवाब मेरे पास आए हैं सभी के जवाब गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। मतलब क्या है बोले, सबका जवाब गलत है।
1: जहाँ सबके गलत वहाँ सिर्फ मेरा सही,
0: आपका सही है, इसलिए मैंने बिना मतलब देरी के कॉल लगा दिया, समझ लीजिए। यस, आप ही का जवाब सही है बिल्कुल। तो बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया।
0: इतना सैड गाना क्यों?
1: बस सुनने का मन करता था, वाकई वजह कुछ नहीं है।
0: मुझे तो लगा कुछ हुआ है तभी ऐसा गाना सुने, और पता है ऐसा क्या होता है?
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं।
0: एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऐसा किसी के साथ कुछ होता है ना तभी ऐसा कोई गाना सुनता है कि मुझे तो कुछ हो गया है कि नहीं।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन होता है सॉन्ग सुनने का ऐसे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको ये गाना सुनाऊंगा। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया। एंजॉय कीजिए गाने को
1: जी भैया।
0: वेलकम।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। कोई पूछे जो मुझसे कि वो रब कैसा है, उसे बता दूं कि वो मेरे यार जैसा है। कस्मों में तू, वादों में तू, हर पल रहे यादों में तू। मेरी दुनिया, मेरे अरमान, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है, मेरी पहचान तुझसे है। मेरी जीवन, मेरी धड़कन, मेरी तो जान तुझसे है।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: और मेरे पास जितने सही जवाब है उनका नाम लूंगा। एक तो इनका नाम मुझे नहीं पता है और नंबर है अंत में यानी कि 60 और 358। पहले इनका मैसेज मेरे पास आया हुआ, इन्हीं का मैं कॉल लगाऊंगा। और उनके बाद है हमारे किनका हमारे शमशाद हुसैन जी का भी बिल्कुल सही जवाब है और सुनीता गोप जी का सही जवाब है और कितना दोस्तों का गलत भी है, मतलब उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत से दोस्तों का जवाब गलत है, उनका नाम मैंने नहीं लिया, सिर्फ इनका इनको कॉल लगाता हूँ मैं। जी आपका रेडियो हॉटस्टार में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए प्लीज।
1: मेरा नाम अफजल है, एमडी अफजल।
0: एमडी अफजल जी बहुत बहुत आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं
1: आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ और पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है और पहली बार आपने सबसे पहले सही जवाब दिया है, बहुत बहुत आपको बधाई हो।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी।
1: एक्चुअली मुझे वही वाला सॉन्ग सुनना है सर, जब आपने वो क्विज के लिए पूछा ना तो लिटरली वो गाना मुझे सच में बहुत पसंद है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो आप मेरे लिए वही बजा दे, दोस्ती फॉरएवर मूवी का, वो अक्षय कुमार और बॉबी देओल का मूवी है।
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छा है वो
0: जी, मैं गाना यही प्ले करूंगा। और आप कहाँ से सुनते हैं ये बता दीजिए और कब से सुनते हैं?
1: सर मैं काफी दिन से, लाइक एक साल जैसा हो गया शायद।
0: एमडी अफजल जी है ना?
1: जी सर।
0: चलिए मैं आपका नाम यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एमडी अफजल जी के नाम से। और एक्चुअली उसमें कुछ और यहाँ पे शो करा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैं आपके यानी किस नाम
1: जी, वो आउटलॉ लिखा मैंने।
0: जी जी जी जी जी वही
1: एक्चुअली वो गेमिंग आईडी का नाम है मेरा, इसलिए।
0: अच्छा, गेमिंग आईडी मतलब आप यानी गेम भी खेलते हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, यानी कि वो कुछ मतलब डीपी में दिख रहा है मुझे कुछ, वो यानी कि वो गेम का कैरेक्टर है ऐसा कुछ मुझे लग रहा है।
1: नहीं एक्चुअली वो एक डार्क नाइट मूवी आई थी बैटमैन की।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उसमें वो विलेन का रोल निभाए थे, नाम है उनका हीथ लेजर।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जो जोकर अपन बोलते हैं ना, तो वो जोकर का प्ले रोल किया था हीथ लेजर ने।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: उसी का एक्चुअली वो नहीं है, वो कुछ कंडीशन पे नहीं है इस दुनिया में हमारे बीच।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: वो जो विलेन का एक्टर किए, तो इसलिए उनकी याद में मैंने वो डीपी लगा रखा। हर जगह मेरा यही जोकर वाला डीपी लगा रखा है।
0: गॉड, लेकिन सच में आप कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, मतलब हर किसी से हटकर, है कि नहीं? चलिए अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके, बहुत खुशी हुई और आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और एंजॉय कीजिए अपने गाने को, सुनवाता हूँ ये दोस्ती तेरे दम से। बिल्कुल ये दोस्ती आपके दम से है, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

की फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के जितने भी मतलब अंतरामती में गाने होंगे, जो अंतरे के बोल होंगे, वो फ्रेंडशिप डे पर आप सबको डेडिकेटेड होंगे। एंजॉय द ट्रैक, बहुत अच्छा गाना है।

0: और ये रहा अगला अंतरा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी दोस्ती
1: ये वाला। रहा किसी गाने का अंतरा, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे सुनील कुमार जी का, बांका बिहार से। क्या बात है, अशोक पाल जी हैं लेकिन अच्छा। और जाकिर खान जी का बिल्कुल जवाब सही है, रूपचंद जी का जवाब सही है, अरुण मंडल जी का भी जवाब सही है, और शमशाद जी का भी जवाब सही है, और सुनीता गोप जी का भी सही है, और हमारे अकबर खान जी का भी जवाब बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ मैं नहीं कहूँगा हमारे सरबजीत जी का सही है, और मैं चेक करते जा रहा हूँ, और बहुत से दोस्तों का गलत है लेकिन उनका नाम मैंने नहीं लिया। फिलहाल कॉल लगाता हूँ मैं जल्दी से सुनील कुमार जी को। सुनील कुमार जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छा अमन भैया, और आप एक हफ्ते से नहीं थे तो हॉट स्टार सुना सुना सा लग रहा था।
0: अच्छा जी, ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है।
1: जी जी ऐसा ही है सर।
0: आप सभी तो एंजॉय कर रहे थे ना आरजे वंशिका जी के साथ?
1: सर दिन में कर रहे थे ना, शाम को इस समय तो एंजॉय करने का तो मैं ये समय होता सर। अच्छा। दिन में तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो काम करते करते आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: तो मैं आपको बता दूं कि आज से आरजे आरजे मतलब
1: पता है सर, पता है हमें एक हफ्ता पहले ही पता लग गया
0: था। वाली है आज से बिल्कुल आरजे आकांक्षा जी, सुनिए
1: जी जी,
0: उम्मीद और दुआ कीजिए कि नेटवर्क ना भागे क्योंकि नेटवर्क का बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, ये चीज है।
1: हो सकता है सर नेटवर्क सही चले।
0: हाँ।
1: मेरा जहाँ तक अंदाजा है जी, रात में थोड़ा सा सही चलता है।
0: आप दुआ कीजिए कि नेटवर्क अच्छा काम करे क्योंकि वो करेंगे।
1: पहला दिन उनको स्वागत के रूप जी जी पहला दिन आज उनके स्वागत के रूप में मैं तो दुआ करूंगा कि नेटवर्क कहीं गड़बड़ ना करे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो कल यानी कि कल 9:30 बजे वो टेस्ट कर रही थी, जैसे कुछ बोलना स्टार्ट किया बस नेटवर्क गायब हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
0: और वो एक्चुअली मतलब वो शो करेंगी लखनऊ से, है ना, ये चीज है
1: जी जी।
0: तो फिलहाल बता दीजिए अंता के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं
1: सर? शायद मैंने ये लिख रखा है, मैंने भी एक गीत लिखा तेरी सूरत देखकर।
0: हाँ, जवाब क्या है ये भी बता दीजिए।
1: अच्छा जवाब जवाब, एक मिनट सर एक मिनट
0: जी जी, देख लीजिए देख लीजिए।
1: चल चल मेरे भाई,
0: बिल्कुल सही जवाब।
1: चल मेरे भाई जी जी, नशी फिल्म का गाना है, अमिताभ और ऋषि कपूर पर फिल्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय कीजिए इस गाने को
1: जी
0: जो आपने बताया।
1: धन्यवाद सर। बिल्कुल।

0: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
1: मैं का जानू का चीज हो वह प्यार, करिजवा पे लागी नजर की कटार। अरे दीवानी ना करना दानी, तेरी बातें हैं बड़ी तूफानी। नहीं ये मौसम दिल लगी का, नहीं ये मौसम खुदकुशी का।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल, मेरे पास सबसे पहले अशोक पाल जी का मैसेज आया हुआ है और इन्हीं मैं कर लगाऊंगा, और इनके बाद से मेरे पास सही जवाब पहुंचा है हमारे ये रूपचंद जी का, रूपचंद गोयल जी हैं और हमारे शमशाद जी हैं, और शमशाद जी हैं साथ ही साथ ये सुनील कुमार जी हैं और पूजा भास्कर जी भी हैं और सर्वजीत शेट्टी जी हैं, आरती तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, और सर्वजीत क्या नाम इनका, सुजीत जी हैं।

0: ओ मैं
1: सलाम अलैकुम,
0: मैंने गलती कॉल लगा दिया, सॉरी। अशोक पौजी को लगाना था, ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। अशोक पाल जी बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। और कैसे हैं अशोक पाल जी?
1: बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं?
0: हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
0: ओके जी, तो यहाँ पे जवाब क्या है जरा बता दीजिए।
1: तो क्या आया मौसम दोस्ती का?
0: आया मौसम दोस्ती का बिल्कुल सही जवाब है, फिल्म मैंने प्यार का गाना है। और क्या सुनना चाहते हैं ये भी बता दीजिए।
1: दोस्ती तो ये सुना दीजिए, हमसे तुम दोस्ती कर लो।
0: हमसे तुम दोस्ती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो। मिल गए तुम? हाँ मिल गए, एंजॉय कीजिए।
1: ओके।

0: सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। ये दुनिया गोल है, अंदर से बोल है, तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। ये दुनिया गोल है, अंदर से बोल है, तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। तेरे मेरे सीने में दिल का डबल रोल है, सच्ची अपनी यारी बाकी सब झोल है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना।

और इसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा, इसका मतलब शायद जवाब किसी को नहीं पता है। ठीक है, मैं गाना चेंज कर दूंगा दूसरा, अगर जवाब आ गया तो इस अंतरे के बाद। बिल्कुल जवाब मेरे पास आ चुका है, सीधे कॉल ही लगा लेते हैं भाई साहब को।

0: जी आपका रेडियो हॉटस्टार में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आपका शुभ नाम पहले?
1: हाजी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, तो अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
1: जी सर, मेरा नाम मोहम्मद जलील है।
0: मोहम्मद जलील साहब जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो हॉटस्टार में। और क्या बात है, आपने सही जवाब दिया है बिल्कुल।
1: हाँ जी सर, तो पहले सुनते ही पता चल गया था मैं गाना ये।
0: अच्छा ओके, तो जैसा गाने का बोल बता दीजिए, और क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताइए मुझे।
1: सर जी गाना यही सुनना है, दोस्ताना तेरा मेरा तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना।
0: ओके जी, तो मैं सुनाऊंगा।
1: बहुत ही प्यारा गाना है
0: जी। ये तो बात है, ये दोस्ताना तेरा मेरा दोस्ताना है ना।
1: एक और ग्यारह कुमार सानू और सोनू निगम का।
0: बिल्कुल ओके जी, तो मैं इसको गाने को सुनाऊंगा। और आप मतलब कहाँ से सुन रहे हैं?
1: जी मैं बूंदी राजस्थान से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा जी ओके। और ये भी बता दीजिए मतलब कब से सुनते हैं?
1: जी सर मुझे हो गए काफी 6 महीने हुए आपके।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इतने दिन हो गए।
1: हाँ सर
0: ओके जी,
1: मुझे बहुत पसंद आता है आपका प्रोग्राम। अच्छा, बहुत पसंद आता है।
0: थैंक यू सो मच। लेकिन आज आप पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं, अच्छा लगा मुझे। आप सभी
1: नहीं सर, मैंने बहुत सी बार जवाब दिया है उस कोई किसी और प्रोग्राम में भी जवाब।
0: अच्छा,
1: दिया है गाने की फिर क्वेश्चन
0: क्या। अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, मैं मतलब समझ गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल ये गाने एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: बिल्कुल, ये दोस्ताना तो कभी टूटने वाला है नहीं। फिलहाल ये अंतरा सुनिए और जवाब
1: दीजिए। ये रहा किसी गाने का अंतरा। होठों के ऊपर रुकती नहीं, पलकों के पीछे छुपती नहीं, लगती नहीं ये दिल की लगी, लग जाए तो फिर बुझती नहीं। कैसा नशा है इस प्यार का, दिल जिससे मदहोश हो जाते हैं। कुछ लोग गाते हैं झूम के, कुछ लोग खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी एक दिन शायरी बन जाती है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल।

जो जवाब आए हुए उसमें से इनके कुछ ही जवाब सही है, जिसमें से सबसे पहले नंदलाल यादव जी का जवाब सही है, और इनके बाद जाकिर खान जी का सही है, और जाकिर जी के बाद सही है नाहिद अंसारी जी का।

लोग का तो जवाब गलत है, उनका नाम मैंने नहीं लिया, सभी दोस्त मैंने इनको छोड़कर सभी का जवाब गलत है। कौन लगाते हैं नंदलाल जी को? इनका कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। नंदलाल जी आपका कॉल नहीं लग रहा है, नंबर से लगाना पड़ेगा क्या? नंदलाल जी का कॉल नहीं लग पा रहा है, आई एम सॉरी। एक बार मैं कोशिश करता हूँ इनको मैं नंबर से लगा लूँ। नंदलाल जी

0: का किसी और नंबर पे कॉल आया हो। कॉल लगाते हैं जाकिर जी को जो इन सेकंड थे। जाकिर जी
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम है। चूंकि नंदलाल जी का कॉल नहीं लग पाया इसीलिए आपको कॉल किया गया है।
1: जी जी,
0: तो बताइए और कैसे हैं आप?
1: सब ठीक है सर, बढ़िया है।
0: जी तो अच्छी बात है, आप इन बढ़िया होना चाहिए। तो पहले जवाब बता दीजिए कौन सा है।
1: दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है, आर्ज मूवी का।
0: ओके, और कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: सर यही सुना दीजिए।
0: यही सुना दें, अच्छा सुनवा दें।
1: थैंक यू।
0: और यही गाना वो भी सुनना चाहते थे हमारे नंदलाल जी, दोनों की हो ही गई।

0: लेकिन मैं अगला अंतरा प्ले करता हूँ, मतलब आप जल्दी से समझिए और जवाब भेजिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और एक जवाब और भी आया था सही, क्योंकि इन्होंने उसमें इतना यानी कि फूल पत्ती लगा दिया था तो मैं समझ नहीं पाया था। उनका नाम है हमारे यानी कि रणवीर सिंह जी। तो रणवीर सिंह जी बिल्कुल मैं आपका भी जवाब बिल्कुल था सही था। आई एम सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया। ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगला मैं यहाँ पे सुनाऊंगा अंतराय, इसका जवाब सही से दीजिएगा और फूल पत्ती मत लगाइएगा प्लीज। ओके।

0: और यहाँ ये रहा अगला अंतरे के बोल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: लगी दोस्ती को किसकी नजर, बदल जाएगा तू नहीं थी खबर। न कस्में रही न वादे रहे, न संग मरने के वो इरादे रहे। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है तो।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: तो गाना सुनना है, कोयल या गाती है।
0: अभी गाना नहीं सुनवा सकता हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, अभी चूंकि ये लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, इसलिए ठीक है। ओके, धन्यवाद।
1: ओके ओके।

0: बिल्कुल तेरे ख्याल में रहते हैं। फिलहाल मेरे पास सबसे पहला जवाब है अंचल कुमार जी का, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बघाड़े जी का, रूपचंद जी का, और किनका दिखता हूँ, यहाँ पे एमडी फैज जी का भी है, सरफराज जी का भी सही है, और किनका हमारे नंदलाल जी का भी सही गाना है, मतलब है यानी कि जवाब है, और उनके पास से किनका है, अनिल कुमार जी का भी जवाब सही है बिल्कुल, और अफजल जी का भी जवाब सही है, और उनके पास से हमारे एमडी जलील जी का भी जवाब सही है। ओके, लेकिन कौन तो भाई अंचल जी को लगेगा, क्योंकि सबसे पहला जवाब इन्हीं का आया हुआ है। अब यही पुकारे भाई अंचल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आराम सर।
0: मैं तो एकदम झकास बिनास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक गारंटी के साथ हूँ। बताइए, हेलो अंचल कुमार जी।
1: आज आंसर सर बताना है, हाँ। ऐसा भी देखो वक्त फिल्म साथी से सर।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका, और सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए।
1: गाना सुना दीजिए, जी ना लगे बिन तेरे यारा, शक्तिमान फिल्म का।
0: शक्तिमान का एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया,
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी। और मैं आप सबके साथ हूँ 9:30 तक, क्योंकि आने वाली है 10 बजे आरजिया गंशा आप सबकी चहेती।

0: ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। लोगों को आते हैं दो नजर हम, मगर देखो दो नहीं। हो जुदा या खफा, ए खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232, यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

बेटा। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है रूपचंद गोयल जी का, नाहिद अंसारी जी का, अंचल कुमार जी का, रवि महर जी का, प्यारे प्रमोद बघाई जी का, संध्या पटेल जी का, रणवीर सिंह का, सरोजी सड़ी जी का, आरती तिवारी जी का, लेकिन सीधे कॉल लगाते हैं रूपचंद गोयल जी को।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत वेलकम है रूपचंद गोयल जी, कैसे हैं?
0: थैंक यू सर जी, वेलकम है।
1: बहुत देर बाद आपका नंबर
0: है सर जी।
1: जी तो बताइए जवाब
0: जी,
1: क्या
0: जी?
1: है?
0: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
1: अच्छा जी, और आप ये सुनना क्या चाहते हैं, ये भी बता दीजिए।
0: गीत सुनना है बरखा रानी जरा जम के बरसो।
1: बरखा रानी
0: जरा जम के बरसो।
1: बरखा रानी जरा जम के बरसो, देखता हूँ
0: ये गाना। क्योंकि हमारे यहाँ सर हल्की बूंदा बांदी हो रही है।
1: अच्छा,
0: इंद्रदेव से यही प्रार्थना है कि जरा जम के बरसो।
1: अच्छा जी, ठीक है, बारिश हो जाएगी, घबराइए मत, है ना
0: जी। जी
1: ये गाना फिल्म सबक का है ना?
0: सबक जी जी जी
1: जी, सबक का ही मुझे गाना लग रहा है। लेकिन
0: जल्दी हाँ, नहीं सबक का ही,
1: जल्दी डाउनलोड हो जाए तब ना।
0: हाँ जी जी,
1: कभी कभी देर हो जाती है डाउनलोड।
0: जी जी,
1: कोई बात नहीं, चलिए इसको ऑनलाइन में। अच्छा हाँ, चलिए डाउनलोड होने लगा, हमें लगा कि डाउनलोड नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन प्ले करने वाला था। एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।
0: जी जी, थैंक यू, वेलकम।

0: और ये रहा यहाँ पे सवाल। और राजू यादव जी प्लीज आप मुझे कॉल मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तेरी भी खता नहीं मेरी भी खता नहीं, दोनों पे शबाब है उम्र ये खराब है, शौक शायरी का है शेर ये किसी का है, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना, बजाते रहो।

0: इस बार मेरे पास सबसे पहले जवाब पहुंचा है रणवीर सिंह जी का और सुनील कुमार जी का, अंचल कुमार जी का, तो भाई इन्हीं को कॉल लगाते हैं सबसे पहले। भाई रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में
1: जी।
0: और बहुत
1: बड़ी देर में नंबर लगा,
0: बहुत देर से आप जवाब दे रहे हैं लेकिन नंबर अभी लगा आपका
1: जी।
0: जी
1: जी, आपको बहुत बहुत मेहरबानी है सर।
0: मेहरबानी मेरी नहीं है, आपने सही जवाब दिया सबसे पहले दिया, तो मैं आपको जरूर कॉल लगाऊंगा। यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं होती, जो पहले करता है मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ, जाहिर सी बात है।
1: जी जी जी जी,
0: तो बताइए जवाब क्या है पहले।
1: तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई,
0: बिल्कुल दिल लगी ने दी हवा, है कि नहीं?
1: गाना कौन सा? दोस्ताना फिल्म का।
0: जी जी, और
1: वो सनम तेरी कसम फिल्म का गाना है, शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले रहते हैं।
0: शीशे के घरों में
1: देखो तो पत्थर दिल वाले रहते हैं।
0: क्या मतलब?
1: जो प्यार को खेल जो प्यार को खेल समझते हैं तो तोड़ के दिल को हंसते हैं।
0: क्या मतलब? यानी क्या ऐसा भी है क्या कि मतलब यानी
1: जी वो बिल्कुल सही,
0: शीशों के घरों में रहने वाले लोग यानी कि पत्थर दिल हुआ करते, ऐसा है क्या?
1: जी उनकी याद एक जख्म बन गई, वरना भूल जाने का कुछ तो ख्याल था।
0: ओहो हो, क्या बात है। चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद के गाने को, एंजॉय कीजिए।

0: बजते हैं और ये पहली बार मैं गाना सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। इसी बात पर अगला और आखिरी आज का अंतरा वाला सवाल मैं करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी दोस्त, देखते हैं किसका नंबर पहले आता है।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। न बिछड़ेंगे मर की भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें ले।
1: दोस्तों पता कोई
3: अंतरा न बिछ,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। न बिछड़ेंगे मर की भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम।
3: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
1: न बिछड़ेंगे मर की भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135 84

और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है किम का, नाहिद अंसारी जी का। ओके, और सर्वजीत शेट्टी जी है, लिखते हैं नो कॉल। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो आपका नंबर आ भी नहीं गया है, मैं आपको कॉल करूँ। और

0: यानी कि प्रसाद जी ओके, तो फिलहाल कॉल लगाते हैं नाही जी को, आज की विनर भी बनी है, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो नाही दंसाई जी, आप बन चुकी हैं आज के विनर।
1: थैंक यू।
0: आप कुछ भी सुन सकती हैं।
1: नहीं, वो भेजी वही सुनूंगी।
0: अच्छा जी, ओके, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और जवाब क्या है।
1: बने चाहे दुश्मन जमाना, हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: ओके जी, और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: अगर जिंदगी हो तेरे संग।
0: सुनवा दिया, क्या बात है, आज पूरा ये बलमा का सुन के सुर चाहिए।
1: थैंक यू।

0: बिल्कुल, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो वरना ना हो भाई। लेकिन फिलहाल कॉल लगाते हैं सबसे पहले सर्वेश भगत जी को हमेशा की तरह, क्योंकि इनका नंबर तो ऐसे नहीं आता है, स्पेशल कॉल में ही आता है। बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी, कैसे हैं?
1: हाँ ठीक है सर, आपका दुआ है।
0: अच्छा जी, और आपने मुझे मिस किया कि नहीं?
1: बहुत मिस किया।
0: अच्छा जी, हमें लगा कि आप लोग मुझे मिस नहीं किए हैं इसीलिए।
1: नहीं।
0: ओके, तो बता दीजिए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: गुनहगार फिल्म का है।
0: हाँ।
1: लिंक भेज दिए हैं लेकिन गाना का बोल इतना बोलने के हम बोली ने फले मिन
0: कोई बात नहीं, चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का, लेकिन थोड़ा सा गाना सुनने के बाद है ना
1: जी। ठीक है, थैंक यू सर।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी।

0: अगला कॉल लगाते हैं। बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में सुजीत प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी
1: सुजीत
0: जी, आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से कॉल चला करते हैं। Rain is falling, chama, chum, chum.

इनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं दूसरा कॉल देखता हूँ।

0: नेटवर्क का बड़ा इशू है। ओ माय गॉड, अनिल कुमार हरिद्वार जी बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं आप?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल कॉल जिंदाबाद है ना।
1: हाँ जी सर जी।
0: आज क्या सुनना पसंद करेंगे
1: सर? दिल वाले मूवी का सुनवा दीजिए सर।
0: बताइए कौन सा गाना?
1: एक लड़की वो सर।
0: कौन सा? जीता था
1: जीता था जिसके लिए।
0: ओके जी, सुनवा दिया

0: इनका भी कॉल नहीं लग रहा है, लगता है कि नंबर पे लगाना पड़ेगा। इनका व्हाट्सएप कॉल इनका भी लग नहीं पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा फिर से दोबारा लगाने के लिए इनका भी कॉल, और अगला कॉल इनको लगाते हैं।
1: कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
0: संजय सानी जी बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं?
2: जी जी बहुत अच्छे हैं सर, आप वही, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक गारंटी के साथ एकदम।
2: जी जी जी
0: ओके, तो बताइए आज क्या सुना?
2: बहुत दिन आप जी जी जी, ट्रेनिंग कैसा रहा सर आपका?
0: ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग जैसा रहता है, आप नहीं किए हैं, आपको नहीं पता है।
2: हाँ सर,
0: वही ना, यानी कि टाइम भी पास नहीं होता है जल्दी।
2: जी जी जी, उसमें भी सर आपका तो ध्यान हमको लगता है तो लगा रहता होगा, तो यहाँ पर ही कि कब यहाँ से छूटूं।
0: हम क्या बोले, मतलब वहाँ पे समझे कि एक वहाँ पे जेल की भांति आदमी भांति रहता है। जी बताइए तो आज क्या सुना पसंद है? जी, अब इनका कॉल आ रहा है हमारे दिगंबर जी का, कोई बात नहीं, आपके बाद उनको कॉल लगा लूंगा मैं। हाँ बताइए आज क्या सुना पसंद करेंगे?
2: जी शेषनाग का वो फिल्म का गाना है मोहम्मद अजीज की आवाज में।
0: कौन सा?
2: ये नाम दिमाग में तो आ नहीं रहा, अभी सोच ही रहा था आपसे बात हुई उसके बाद भूल गया। शेषनाग का वो गाना, उसमें सर्च करिए ना वो जी, मोहम्मद अजीज और
0: के गीत में गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ, है ना? ओके
2: नहीं, ये तो दूध का कर्ज का है शायद।
0: नहीं, ये शेषनाग का है।
2: हाँ,
0: आपको कौन सा सुनना है पहले मुझे बताइए।
2: मोहम्मद अजीज का है, उसी का सॉन्ग है,
0: अजीज का ही है ये गाना।
2: जी जी, तो जी बिल्कुल सुनवा दीजिए, तब सुनवा दीजिए।
0: एंजॉय कीजिए।

0: देखिए कौन लगा दिगंबर जी को फिर से, शायद लग जाए अभी। हाँ लग गया। दिगंबर जी बहुत बहुत वेलकम है आपका स्पेशल कॉल में, कैसे हैं?
1: नमस्कार गुरु जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, और कैसे हैं दिगंबर जी?
1: ठीक है, आपका शो सुन रहे हूँ, आपका रेडियो हॉट स्टार।
0: अच्छा, आपका वो पिछले हफ्ते गाना मेरा नाम सलमा सच में कमाल मचा दिया था, धमाल मचा दिया था एकदम। आपका नाम सलमा है ना? जी, और बताइए तो आज स्पेशल कॉल में क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: दूरी न रहे कोई,
0: हाय हाय हाय,
1: आज तेरे करीब आओ,
0: हाय हाय हाय,
1: मैं तुम समा जाऊं,
0: हाय हाय हाय, क्या बात है,
1: तुम समा
0: जाओ। वाह
1: वाह
0: जी जी जी, मतलब यानी कि बहुत ही बेहतरीन गाना है। आप तो ऐसा ऐसा गाना चुन के लाते हैं, दिल जीत लेते हैं एकदम। और ये लता मंगेशकर की आवाज में वो फिल्म यानी कि कर्तव्य का लाजवाब है कि नहीं?
1: जी जी, कर्तव्य कर्तव्य मूवी से है अमन सर।
0: अरे मुझे पता है पता है पता है, कर्तव्य मूवी का ये गाना है और बहुत ही प्यारा गाना है। तो आप बताइए एक हफ्ते में।
1: अरे गुरु
0: जी,
1: अरे गुरु गुरु जी, आप तो गुरु, तो गुरु है, हम तो चेला है गुरु जी।
0: ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप भी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं यानी कि महान है और अच्छे अच्छे गाने चुन कर लाते हैं, है कि नहीं?
1: हाँ वो तो आशीर्वाद है आपका मंत्र जी।
0: तो गाना प्ले कर दूं?
1: हाँ,
0: गाना बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच, सुनवाते हैं।
1: ठीक ठीक है।

0: लास्ट को लगाते हैं। बहुत बहुत वेलकम है रवि मोहड़े जी, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। आप कैसे हो, आप बताइए। आपकी कमी बहुत खा रही थी।
0: बिंदास जकास चकाचक गारंटी के साथ मजे में है।
1: आपकी कमी बहुत

0: चलती है हम श्रोताओं के लिए। सर जी आप नहीं रहते, ऐसा लगता है कि करीबन 2 महीने बाद बात हो रही है आपसे।
1: अरे मैं, हम भी आप सबको बहुत मिस किए हैं ना, क्या बताएं।
0: जी जी तो बहुत याद करते हैं हम लोग भी, आज बातें करते रहते, फोन करते रहते एक दूसरे को, हम आपके बारे में ही बातें करते रहते।
1: आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
0: जी सर, ये दूरी ना रहे कोई, ये चला अभी गाना, इसके बाद में तो वैसे ये सेट हो रहा है, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: रास्ते प्यार के, या फिर आपके हिसाब से आप एक अच्छा सा गाना सुनवा दीजिए, आपको जो पसंद।
1: मैं आपको 2 गाने सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा मेरी पसंद।
0: थैंक यू थैंक यू।
1: लेकिन दोनों गाने हट के मिलेंगे आपको, है ना
0: जी?
1: सुनवा
0: जी, कोई बात,
1: इंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

गाने को सुनने के बाद दिल से सुकून मिलता है। एक और गाना सुनिए जो मेरी पसंद का है, और ये पसंद तो समझिए कि भोजपुरी पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है।

ओके जी, अब आरजे आकांक्षा जी के लिए यानी लाइनें चालू कर दी गई हैं। अब आप उनके पास मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल सॉन्ग रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और आप अपने मैसेज भी कर सकते हैं आरजे आकांक्षा जी के लिए।

बिल्कुल लव मैरिज कला। अब बाबू जी के पैसा बांच जाए, मतलब इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। और आरजे आकांक्षा जी की लाइनें खुल चुकी हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार। वो आपका, आप उनका इंतजार करें रात के 10 बजे से 11 बजे तक, सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना दाम दीवाना बना दे। तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय। और हाँ, हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे इनवर्ट मस्ती में, तो जरूर सुनेंगे कल सुबह 11 बजे मुझे फिर से। ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और पता नहीं आपका मेरा बाय बाय मिला कि नहीं मिला, लेकिन इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा कि आप यानी कि कल सुबह 11 बजे मुझे इन्वर्ट मस्ती में फिर सुन सकते हैं और उसके बाद से मैं फिर आऊंगा, मतलब आते रहूंगा। कल तो संडे स्पेशल है ना, तो इंजॉय कीजिए इस गाने को और इसके बाद से फिर मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय।

0: जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगे, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना
0: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: सूरदास का औलाद। तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहते हम कहा ठहरा करने को कहा गया, गया।
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो ये कालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
0: बंद करो। बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
4: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन
0: oh yes September 8

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले दुनिया जले। छम छम छम छम छ छम छ छम। हे गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है। हे गर्ल तुम काहे को इनका